अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.net info@ujala.net

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तुझ

वेलकम प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए या तो कहिए प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप सुन रहे हैं जो

और मैं ढूंढो तो छुप जा। लता जी के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में आप सुने फिल्म जीने की राह, फिल्म जीने की राह का गीत। और लता जी के साथ अब मुकेश जी को आप सुनिए।

जिस्म मगर एक जान है हम, ओ मेरे सनम। आप सुने संगम, हाँ फिल्म संगम से, ये उजाला रेडियो है। Daar kan nummer tijdens kantooruren 020-4090807. Aur agar koi nahi mila to e-mail bhejiye info@ujala.nl.

हाँ मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुम ही से करता है। फिल्म साजन के गीत आप सुने कुमार सानू एंड अलका जी से।

हंसनी मेरे हंसनी कहाँ उड़ चली, जहरीला इंसान, जहरीला इंसान फिल्म का नाम और किशोर कुमार गायक। आज हमारा प्रोग्राम में उजाला रेडियो पर आप सुने हैं।

अब चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। आशा जी के साथ मोहम्मद रफी साहब को आप सुने फिल्म यादों की बारात से।

और बहुत अच्छी बात, इस गीत में हमें लगा कि तूने काजल लगाया और देखो दिन में रात हो गई। इतनी जल्दी, इतना आसान, दिन को रात में बदल देती है काजल, बस का

किशोर कुमार से आप सुने फिल्म महान का गीत कि जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है, अब तो आंखें बंद करके चले के परी।

तेरा वादा, मोहम्मद रफी एंड सुषमा श्रेष्ठा की आवाजों में। फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं, ये लव सतना रोजाला रेडियो ओम दत्त फुर्स हिल होर्ट, या तो

0: हम लोगों का कार्ड का नंबर 020-4090807। Wil jij een reactie achterlaten? I-program per? Stuur dan een mailtje naar info@apenstaartoejala.nl. Ter attentie van Vijay.
1: यहाँ भी आप पहुँचे?
2: आया हूँ, अभी पहुँचा नहीं।
1: पहुँचे हुए मालूम होते हो।
2: आपकी दुआ है।
1: काम करते हो यहाँ?
2: कहिए क्या सेवा करूँ?
1: हार चाहिए, चाहिए।
2: ऐसा हार पेश करता हूँ कि आपके गले से लग कर हार नहीं जीत लगे। ये देखिए, इस मखमल से गोरे गले में सच्चे मोतियों का सफेद मोती, ऐसा लगता है कि जैसे चांदनी से धुले हुए आसमान में आकाश गंगा लहरा रही है। 10,000 शायद दाम आपके लिए कुछ ज्यादा है।
1: बात कम, कोई महंगी सी चीज दिखाइए।
2: जरूर, ये कैसा लगता है आपको? मालूम होता है दूध की झील है, उस पर सोने के पत्तों में लाल कमल खिले हैं। 25,000।
1: बस इतनी हल्की नहीं, कोई भारी सी चीज पेश कीजिए।
2: और ये देखिए, झील मिलाती हुई किरने सिमट कर आपके गले से लिपट देंगे। ये हीरे आपकी आंखों से बाजी लेना चाहते थे, मगर लगता है लजा गए बेचारे। और ठीक भी है, कहा है ना, लाज ही औरत का जेवर है। 1,00,000।
1: बात हुई ना कुछ, हीरो से बढ़कर तो आप से बढ़कर है।
2: अब मेरी जबान से बढ़कर आप है।

आप सुन रहे हैं कि इस गीत में कहीं कहीं यहाँ वहाँ थोड़ी गजल मसल है, है पर स्लिपी सी रंदार, तो इसलिए हम गीत को निकाल देते हैं, एक और गीत को रख देते हैं। फिल्म ब्लैकमेल, किशोर जी।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से बेटा मनोज मिठू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते एतवार को 80 साल की आयु में तख्त ख्यार औत बेटा मनोज मिठू का पिता श्रीमती राजदेई मिठू नत्थू का पति स्वर्गीय पिता श्री शिवनंदन मिठू और माँ स्वर्गीय माँ श्री खीरिया जंगली के बेटा, 10 भाइयों और बहनों के भाई, 3 बहनोई के सार और एक छोटकी का बड़को। अम्स्टरडम जय तो उसका रहने वाला श्रीमान सुंदर प्रसाद मिठू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। इन्हें लोग झिन्नों के नाम से पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले वेलखदाख आ का रहने वाला था। अम्स्टरडम से बेटा मनोज मिठू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार को 80 साल की आयु में तख्त ख्यार औत बेटा मनोज मिठू का पिता श्रीमती राजदेई मिठू नत्थू का पति स्वर्गीय पिता श्री शिवनंदन मिठू और स्वर्गीय माँ श्री खीरिया जंगली के बेटा, 10 भाइयों और बहनों के भाई, 3 बहनोई के सार एक छोटकी का बड़को। अम्स्टरडम जोयतोस डिफेंसर का रहने वाला श्रीमान सुंदर प्रसाद मिठू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। झिन्नों के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया आज शाम के 3:30 बजे फमेदाख हलफीर किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। घर पर बैठक नहीं किए जाते हैं और निवेदन है फूल ना लाने के लिए। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फुरजोरखिंग समस्त परिवार मिठू के दुख

मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Voormaar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

उजाला रेडियो पूरा हॉलैंड में डीएबी प्लस पर और दुनिया भर में इंटरनेट के जरिए उजाला.nl।

6:06 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। दिस इज यू आर उजाला रेडियो और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। जिस हाल में आप होंगे, जहां पर भी आप होंगे, तहे दिल से हम आप सभी को स्वागत करते हैं आज इस बुधवार 20 तारीख मई को, और वो भी साल 2026, जहां से लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से हम फिर एक बार पेश करेंगे प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। आप सभी प्रिय सुनने वालों को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। बेहद खुशी है हम कि आप सभी फिर एक बार चून किए हुए हैं, और आज मेरे प्यारे सुनवालो फिर एक बार आपका दिल हम बहलाएंगे रात्रि में 9 बजे तक। पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम आराम की थे, एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी, इनका प्रोग्राम पहला आप सुन पाए थे, और आज मेरे प्यारे सुनवालो इनका दूसरा प्रोग्राम हम सजाएंगे फिर एक बार। इनकी कुछ खूबसूरत नगमाएं जो इन पर पिक्चराइज किया गया है इनकी मूवीज से हमने निकाल कर आज का ये प्लेलिस्ट सजा रखा है। एंड बॉय ओ बॉय, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेलिस्ट हो गया है ये। और नगमाएं के साथ मेरे प्यारे सुनोला हमेशा कुछ ना कुछ हमारे जो पुराने यादें हैं उनके साथ भी जोड़े हुए हैं, तो हम और आप फिर एक बार मिलकर वो पुराने यादें जो है आज फिर एक बार ताजा करने हम मिलकर ताजा करेंगे। तो मेरे प्यारे सुनो शुभ रात्रि आप सभी को कहते हुए अभी हम प्रोग्राम को आराम करेंगे, और आराम करने से पहले मेरे प्यारे सुनो वालों आपको ये भी बता दे कि हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम के दौरान आप स्टूडियो में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अर्शद अतविल एविल मैथ मैं प्रात ऑफ द व्हाट्सएप, तो 020-363-0008 पर आपको ऐप करना है। और दफ्तर की कार्रवाई मेरे प्यारे सुनो वालों दत् कान फ मानदख तो तुम्हें सात रख स्मोर्गंस फन ऑफ 3 तो तीन में रख 3 बाई टेलीफोन। सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक तार के जरिए आप दफ्तर को तार कर सकते हैं अपना कामकाज के लिए, जैसे कि फरमाइश जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते 020-409-0807 या तो कीजिए लगातार 24 घंटे 7 दिन किसी भी दिन किसी भी वक्त किसी भी पल आप मेल के जरिए आपकी फरमाइश जरूरी खबरें मौत की खबरें के लिए आप जानकारी प्राप्त करना चाहोगे, इंफॉर्मेशन लेना चाहोगे, तो आपको मेल करना है info@ujala.nl स्टूडियो मेल चे नॉट info@ujala.nl। देवानंद साहब जी का बहुत सारे मूवीज हिट हुए हैं और इनके बारे में इतने सारे आर्टिकल्स लिखा गया है, बस आप इसे गूगल कर ले, इनके बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहोगे क्या क्या नहीं लिखा है, बाप रे दादा। तो आप अगर जानकारी लेना चाहोगे उनके बारे में तो आप जाइए इंटरनेट पर, जरूर से जरूर उनका नाम अगर आप वहां पर गूगल पर फरमाएंगे इतने सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। और हम आपको उनके सिर्फ म्यूजिक जो है हमारी ये प्रोग्राम में आप तक हम पेश करेंगे। आज का ओपनिंग सिलेक्शन की ओर तो हम आपको ले चलते हैं, और वो है एक नगमा फ्रॉम द मूवी साहेब बहादुर। ये फिल्म जो है मेरे प्यारे सुनने वालों 1980 का है, नीघ तीन तख्त, और राजेंद्र कृष्ण इनका लिखा हुआ गीत है। किशोर कुमार गीत गाएंगे और वो भी मदन मोहन के साज और संगीत पर, कि राही था मैं आवारा और फिरता हूं मैं मारा मारा। एंजॉय मेरे प्यारे सुनने वालों, एंजॉय बैक टू द फ्यूचर, आप ही का फेवरेट रेडियो स्टेशन पर उजाला रेडियो, और एंजॉय दिस सॉन्ग।

गीत किशोर कुमार ने गाए हैं मदन मोहन के साझा और संगीत पर। आज का ओपनिंग सिलेक्शन जो हमने निकाले हैं 1980 नेहतीन तख्तक का फिल्म साहेब बहादुर। साहेब बहादुर मेरे प्यारे सुनने वालों एक फिल्म जो देव साहब जी के बड़े भाई चेतनानंद जी ने डायरेक्ट किया है और देव साहब जी ने काम किया है प्रिया राजवंश के साथ ये मूवी में। और इन दोनों के अलावा मैं देखता हूँ ओम प्रकाश भी है, आयुष जोहर पेंटल, आगा मुकरी, के एन सिंह और आसरानी साहब जी। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन। मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे, तहे दिल से आप सभी प्रिय सुनने वालों को फिर एक बार स्वागत करता हूँ और बेहद खुशी है हम कि आप सभी भी फिर एक बार जुड़े हुए हैं उजाला रेडियो के साथ। लाइफ एंड आर एक यू आर के स्टूडियो रतनाम से पेश कर रहा हूँ प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर, आज फिर एक बार 6 से 9 बजे तक। और आज प्रोग्राम फिर एक बार देवानंद साहब जी का, इनके मूवी से इन पर पिक्चराइज किया गया नगमा आप तक पेश हम करने वाले हैं फिर एक बार। न्यू 3 मिनट 4 o'clock फन हाल ऑफ सेफ, सरे 6 बजने में 10 मिनट बाकी है और आपको झुलाएंगे मेरे प्यारे सुनोल पिछले हफ्ते की तरह और हमेशा जो जैसे मैं करता हूँ नए पुराने। तो 80 से हम वापस चलेंगे 1981 की ओर। फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है, जब प्यार किसी से होता है मशहूर मूवी। और ये मूवी से दो नगमाएं आगे पीछे आप तक हम पेश करेंगे, ये दोनों नगमाएं ही मैं देखता हूँ हसरत जयपुरी जी, हाँ हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ है, संगीतकार है शंकर और जय किशन और रफी साहब जी दोनों नगमाएं गाएंगे। पहला गीत कि जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो और उसके बाद में तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी।

जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। और उससे पहले जियाओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो, जब प्यार किसी से होता है। रफी साहब जी की दो नगमाएं मेरे प्यारे सुनने वालों, दोनों ही हसरत जयपुरी जी ने लिखा और जिसका संगीतकार शंकर और जय किशन। निकाले हैं हमने 1961 नेहती नैनन सेसख का फिल्म जब प्यार किसी से होता है। एक फिल्म नाजीर हुसैन का प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ और जिसमें देवानंद साहब जी ने काम किया है आशा पारेख के साथ, प्राण साहब जी भी है, सुलक्षणा राजेंद्र नाथ, राज मेहरा, ताहिर हुसैन। मेरे प्यारे सुनो लो, अगर आप खा रहे हैं तो स्वादिष्ट भोजन हो, काम पर हो तो दिल लगाकर काम करना, और अगर सड़क पर आप हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो पैदल हो, बाइसिकल पर हो या मोटर कार पर, संभाल के गाड़ी या संभाल के चलना। आज तो काफी बारिश है, बीते हुए दिनों भी काफी बारिश थे, हवा ठंड तो नहीं है लेकिन फिर भी, लेकिन कल से है और जाकर वीकेंड तक, जो पिंकस्टर वीकेंड है, बहुत सारे लोगों के लिए लंबा वीकेंड है, तो मौसम का हालात बहुत ही खूबसूरत होंगे, तो आप भरपूर एंजॉय करें। फिर एक बार एक सच से हम आपको वापस ले चल रहे हैं 1980 के ओर। नीहंतीन तख्त फिल्म का नाम, मेरे प्यारे से नौलो, फिल्म का नाम है मनपसंद, और मनपसंद का एक नगमा आप तक हम पेश करेंगे। अमित खन्ना जी का लिखा हुआ और जो मिलकर गाएंगे राजेश रोशन के साज और संगीत पर, किशोर कुमार और लता जी की चारू चंद्रा की चंचल चितवन पेश करता हूं ये नगमा।

सारेगामा पा मारेगा सारेगाओ, चारो चंद्र की चंचल चितवन, किशोर कुमार और लता जी की आवाजें, अमित खन्ना का लिखा हुआ गीत, ये दोनों ने मिलकर गाए हैं राजेश रोशन के साज और संगीत पर। 1980 नेहतीन तख्ता का फिल्म मनपसंद से हमने नगमा को निकाले, और ये फिल्म का डायरेक्टर बासु चटर्जी, और आपको मालूम होना चाहिए सभी गाने लिखा गया है अमित खन्ना जी के जरिए, और अमित खन्ना जी भी ये फिल्म का प्रोड्यूसर, जिसमें एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी ने काम किया है, टीना मुनीम के साथ महमूद साहब जी, गिरीश कर्नाड, जलाल अग्गा, सिंपल कपाड़िया, बिरबल और लीला मिश्रा। हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते मेरे प्यारे से नॉलो चेक www.puntujala.nl www.puntujala.nl। एक मूवी का डबल फिर एक बार सेवा में हम पेश करेंगे आप सभी का। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने, मतलब ये कि हम 80 से फिर वापस चलेंगे 1963 के ओर। फंतख्तक ननी खंतीन द्रियन सेस्तक, तेरे घर के सामने, दो नगमाए फिर एक बार, हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ, एक प्यार भरा एक दर्द भरा। और मैं देखता हूँ संगीतकार जो है एस देव बर्मन, सचिन देव बर्मन मेरे प्यारे सुनने वालों, और रफी साहब जी ये दो नगमाए गाएंगे, जैसे मैंने कहा एक प्यार भरा और उसके बाद में एक दर्द भरा। पेश करता हूँ

तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, जाने ना मेरा दिल ये दीवाना। और उससे पहले मेरे प्यारे सुनो, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो रे। दो खूबसूरत नगमाएं रवि साहब जी की आवाज में हमने आप तक पेश किया है। नगमाएं लिखा गया है हसरत जयपुरी जी के कलम से और एस डी बर्मन यानी कि सचिन देव बर्मन संगीतकार। 1963 नेखतिंद्रियन सेस्तख का फिल्म तेरे घर के सामने से हमने ये दोनों नगमाएं निकाले हैं। एक फिल्म जिसका प्रोड्यूसर और एक्टर दोनों ही एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी, डायरेक्टर इनके छोटे भाई मिस्टर गोली विजयानंद, और नूतन ने भी साथ दिया है ये फिल्म में। ओम प्रकाश जी, यंकी दास, राजेंद्र नाथ और कौन है, मुमताज बेगम, प्रतिमा देवी, रशीद खान और प्रवीण चौधरी। दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों और 7:45 का वक्त है। अभी 7 बजे इश्तिहारे आप सुनेंगे और जहां तक मैं देख सकता हूं तो खुशी की बात है मृत्यु समाचार नहीं है प्रोग्राम में, तो मतलब ये कि सूचनाओं के बाद हम बहुत ही जल्द फिर सेवा में हाजिर आएंगे लेकर ये प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। फिलहाल तो हम आपको 63 से ले चलेंगे 1977 की ओर। नेखतिंद्रियन फिल्म का नाम कालाबास, और कालाबास का एक नगमा जो किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी मिलकर गाएंगे। ये आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ नगमा है और कल्याण जी अनान जी संगीतकार। ये नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों,

हमसे हाँ हाँ कसम से। किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजें, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं, और वो भी कल्याण जी अनान जी के साझ और संगीत पर। 1977 का मूवी फिल्म कालाबाज से हमने नगमा को निकाले। यश खोली ने प्रोड्यूस किया है, अशोक रॉय ने डायरेक्ट किया है, देवानंद साहब जी, सीनतमान असरानी और देव कुमार का एक फिल्म। मेरे प्यारे सुनो लोग, घड़ी की तरफ मैं देख रहा हूं तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, और वो भी 7 बजे की ओर। मैं एक मूवी वापस जाना पड़ेगा 77 से 1965, निहतीन फाइव एंड सिस्टर। फिल्म का नाम है 3 देवियां। ये फिल्म से 2 नगमाएं निकालेंगे, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार है एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन। पहला गीत किशोर कुमार और लता जी मिलकर गाएंगे, और उसके बाद में एक गीत आप सुनेंगे रफी साहब जी की आवाज में। दोनों नगमाओं के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों ब्रेक होंगे 7 बजे का, और ब्रेक के बाद आप सभी से फिर हम मिलेंगे। ये फिल्म 1965 का है, निहतीन फाइव एंड सिस्टर। 3 देवियां का जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है अमरजीत, देवानंद, सिमी नंदा, कल्पना, सुलक्षणा, आयुष जौहर का एक फिल्म। तो एंजॉय द नगमास, और मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

0: पुण्य संस्कार होने वाले हैं उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

पी और जी, मेरे प्यारे सुनने वालों, टू पी और जी कहता है ये कबीर, मेरे प्यारे सुनने वालों, किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सभी ने सुना है, अमित खन्ना जी का लिखा हुआ और किशोर कुमार ने जो गाए हैं राजेश रोशन के साज और संगीत पर। देश परदेश फिल्म का नाम और ये फिल्म 1978 का है। नीहती नाख्तन सेवन तक एक फिल्म जो एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी ने प्रोड्यूस डायरेक्ट किया है और मूवी में भी एक्ट किया है। देश परदेश में इनके अलावा टीना मुनीम को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। अजीत भी है, प्राण साहब जी, अमजद खान, टॉम एल्टर, प्रेम चोपड़ा, डॉक्टर श्री राम लागू, इंद्रानी मुखर्जी, सुचित कुमार, भरत कपूर और कौन है, सुधीर, हाँ जी, महमूद साहब जी, ऑफ कोर्स महमूद साहब जी, ए के हंगल, बिरबल, पेंटल, जंकी दास और राज मेहरा। ये उजाला रेडियो है, मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं हूं आपका यारो खया रतन राम दुलारे पांडे और उजाला रेडियो के स्टूडियो रोटरडाम से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। आज दूसरा हिस्सा जो हम सजा रहे हैं, बना रहे हैं आप सभी के लिए बहुत प्रेम और प्यार के साथ, एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी का इनके पॉपुलर मूवी से इन पर पिक्चराइज किया गया हुआ खूबसूरत नगमाएं हमने निकाल कर आज का प्ले लिस्ट सजा रखा है और आपको झुला रहे हैं, कभी हम ऊपर चढ़ते तो कभी नीचे, जैसे कि अख्तन सईफ अंतक में अभी गीत फिल्म देश परदेश का आप सभी ने सुने हैं। और आपको अब हम एकदम वापस ले चलेंगे नीहतीन सेव नन फाइव तक के ओर 1957 57 का फिल्म 9-2-11 से दो नगमाएं निकालेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों। और नगमाएं मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ है और जिसका संगीतकार एस दे बर्मन, सचिन देव बर्मन। पहला गीत जो आप सुनेंगे रफी साहब जी और नाइटिंगेल आशा जी की आवाज में, एक छेड़छाड़ रोथना मनाना गीत, और उसके बाद में एक नगमा आशा जी जो किशोर कुमार के साथ मिलकर गाएंगे। तो चलो सुनते हैं ये दो नगमाएं फ्रॉम द मूवी 9-2-11।

हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोली, और जो है जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो, किशोर कुमार की आवाज। और उससे पहले आप सभी ने सुना है गीत रफी साहब जी और आशा जी का, काली के रूप में या कली के रूप में चली हो धूप में कहां। दो नगमाई मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार थे एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन। हमने निकाले हैं फिल्म जिसका नाम है 9-2-11 और ये फिल्म 1957 का है, निगतिन सेवनन फेफ्ट। फिल्म का डायरेक्टर मेरे प्यारे सुनने वालों विजय आनंद, देवानंद कल्पना कार्तिक और जीवन का एक फिल्म जिसमें शशिकला भी है, रशीद खान, ललिता पावर और मदन पुरी। और कल्पना जी देवानंद का या वसुंफराव। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो झांकू तो 4 मिनट बाकी है सरे 7 बजने में मेरे प्यारे सिनेमा फिर उन्हें तो वोट क्लोक फन हालफा। और एक छलान फिर एक बार लगाएंगे 20 साल का, वहां फन 57 1977। फिल्म का नाम डार्लिंग डार्लिंग और दो नगमाए ये फिल्म से निकालेंगे मेरे प्यारे सिनेमा वालों जो आप तक हम पेश करेंगे। दोनों ही नगमाए आनंद बख्शी जी ने लिखा, संगीतकार राहुल बर्मन, आर डी बर्मन। और याद मुझे कैफ स्पीक हो दो नगमाए किशोर कुमार का हम पेश करेंगे। पहला गीत किशोर कुमार अकेले गाएंगे और उसके बाद में किशोर कुमार नाइटिंगेल आशा जी के साथ मिलकर गीत गाएंगे। एंजॉय मेरे प्यारे सुनो, दिस इज यू आर बैक टू द फ्यूचर। देवानंद साहब जी का प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से।

रात गई बात गई समझे, और उससे पहले कि जो आप सभी ने, ये औरत है या वो औरत है और ये है शराब, इन दोनों में कौन है खराब। दो नगमाएं किशोर कुमार का गाया हुआ और ये आखिरी नाइटिंगेल आशा जी के साथ। दो नगमाएं आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार आर डी बर्मन थे, राहुल बर्मन। फिल्म का नाम डार्लिंग डार्लिंग मेरे प्यारे सिने वालों, डार्लिंग डार्लिंग 1977 का मूवी है। निहतिन सीवन सीव तक गोगी आनंद जी का डायरेक्ट किया हुआ मूवी, जिसमें देवानंद साहब जी ने काम किया है सिमर तमान के साथ, प्रेम चोपड़ा महमूद साहब जी, जीवन दुर्गा खोती नदीरा महमूद, धीरज कुमार हेलन और बिरबल।

0: आपको हम कहां ले चलेंगे दतमुति कीफ कई कहोड़ सेफ न सेफ तक से हम वापस चलेंगे 1955 1955 हाँ एक वस नहीं खबर हो फिल्म मैंने देखा बहुत खूबसूरत मूवी है और ये मूवी में तमाम नगमाएं लाजवाब बेमिसाल आज एक फरमाइश वाला नगमा निकाल रहा हूँ एक गीत जो मुझे बहुत सालों तक वापस ले चलेंगे सूरीनाम में जब भी शादी वादी होता था तो ये गीत फरमाइश किया जाता था और आपको तो मालूम है मुझे फरमाइश वाला सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं फरियारी शादी विदाई को मारो लोड़ी वाला सॉन्ग अरे बाप रे दादा सो आई लाइक दिस सॉन्ग पुराने हैं ओरिजिनल है और मैं देखता हूँ गीत जो है शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गीत है और एस डी बर्मन सचिन देव बर्मन संगीतकार है दादा हेमंत कुमार जी गीत गाकर सुनाएंगे मेरे प्यारे सुनने वालों और ये गीत भी कुछ इस तरह से है कि शादी हो रहे हैं और वो भी शिव भगवान जी का और इसके सिलसिले में बहुत खूबसूरत गीत बनाया गया सजाया गया और गाया गया है फिल्म में देवानंद साहब जी पर पिक्चराइज किया गया है वो नगमा आप तक मैं पेश करने जा रहा हूँ हियर ऑन यू आर फिल्म का नाम मुनीम जी और आप सुनेंगे दादा हेमंत कुमार जी
1: बम बम भोला बम बम भोला बम बम भोला

हम शिव जी बिहाने चले पाल की सजाई के बहुत ही खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों दादा हेमंत कुमार जी की खूबसूरत आवाज में हमने आप तक पेश किया है। और ये गीत जो है मेरे प्यारे सुनने वालों मुझे भी बहुत सालों तक वापस ले चल रहे हैं, जब भी मैं बहुत छोटा था, जहां सुबह होते थे हमारे घर में मेरी माता जी पिताजी रेडियो को ऑन करते थे और इस तरह के नगमाएं हमेशा हुआ करता था रेडियो पर। एंडार्बेनिक या शादीवादी जब होता था, फरमाइश होता था, ये गीत मुझे याद है। आजकल कहाँ, बहुत कम लोग इस तरह के खूबसूरत नगमाएं आप फरमाइश करते हैं। हालांकि ये गीत इतने सारे बातें कह रहे हैं, लेकिन समझने की बात है। हाँ, नतुलक थोड़ा सा मस्ती वस्ती भी इसमें है, होना भी चाहिए। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये गीत था और संगीतकार सचिन देव बर्मन, एस डी बर्मन मेरे प्यारे सुनने वालों। मुनीम जी फिल्म का नाम, और ये फिल्म 1955 का है। निहतीन फैफन फैफ तक सुबोध मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, देवानंद साहब जी और नालिनी जयवंत का एक फिल्म जिसमें प्राण साहब जी भी है निरूपा रॉय। और ये फिल्म बहुत खूबसूरत है मेरे प्यारे सुनने वालों, यकीन से हम कह रहे हैं। मुनीम जी बहुत खूबसूरत मूवी है, गाने लाजवाब बेमिसाल है। देवानंद साहब जी का ये फिल्म विद नालिनी जयवंत, लता जी की कुछ खास नगमाएं हैं, गीता दत्त जी का, लेकिन हेमंत कुमार का ये नगमा और भी नगमाएं हैं जो हेमंत कुमार ने गाए हैं, और किशोर कुमार का एक मशहूर नगमा भी ये फिल्म में भी है। हम आपको ले चलते अगले मूवी की ओर मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये अगली मूवी से भी दो नगमाएं निकालेंगे। ये दो नगमाएं के बाद हम ब्रेक की ओर बढ़ चलेंगे 8 बजे का। और आपको मालूम रहे मेरे प्यारे सुनो, कल रात्रि को मोरखनावंत 21 तारीख मई को आपका सेवा हम करने चले आएंगे। यही स्टूडियो रोतड़ाम से पेश करेंगे प्रोग्राम 8 बजे से 11 बजे, दिल की आवाज विद ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स और कुछ दर्द भरे नगमाएं जो उसमें हमेशा शामिल होते हैं। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि भरपूर आप मेरा साथ देंगे कल रात्रि में, vanaf 8 uur in de avond tot 11 uur. Dilke Awaas, hier op UR. Vijfenvijftigste ik chalan lagaenge, mire pjari sinualo. 19 jaar ga. Bijna geen 20. 19 jaar. Unisal ga. Or, ham jaker pochenge 1974 per. 1974 फिल्म का नाम इश्क इश्क इश्क, और ये फिल्म का दो नगमाएं मेरे प्यारे सुनने वालों आप तक हम पेश करेंगे। दोनों ही किशोर कुमार गाएंगे और आखिरी गीत किशोर कुमार नाइटिंगेल आशा जी के साथ गाएंगे। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ नगमा है मेरे प्यारे सुनने वालों दो, और संगीतकार आर डी बर्मन, देवानंद प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर ये फिल्म का, सीना तमान के साथ शमनासमी प्रेमनाथ इफ्तखार। और पहला गीत एक क्या नाम है, फरमाइश वाला सॉन्ग है, और वो गीत पहला पेश कर रहा हूं।

0: चुप क्यों हो?
1: नहीं तो
0: खोए खोए से क्यों हो?
1: नहीं तो
0: फिर कुछ बोलो ना।
1: क्या बोलूं?

शर्माना यूं, घबराना यूं, पर्दा की ये आज रात है। नाइटिंगेलाशा जी और देवानंद साहब जी ने मिलकर इस गीत को गाए हैं। हमारे प्रिय सहीर लुधियानवी जी इनका लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं और संगीतकार थे आर डी बर्मन, राहुल डी बर्मन। फिल्म का नाम जोशीला, जोशीला मेरे प्यारे सुनने वालों 1973 का फिल्म है, 1973। एक फिल्म जो यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया है, देवानंद साहब जी, हेमा मालिनी, राखी और जिन पर ये गीत पिक्चराइज किया गया था, बिंदु ने काम किया है। इन सभी के अलावा भी मैं देखता हूँ प्राण साहब जी भी है, रुपेश कुमार, पटमा खन्ना, मनमोहन कृष्ण, मदनपुरी आइस जोहर, लक्ष्मी छाया, ए के हंगल, इफ्तखार, जगदीश राज, सुधीर, सुलक्षणा। 10 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों और वो भी 8 बजकर। आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये, बैक टू द फ्यूचर आप सुन रहे हैं और देवानंद साहब जी, द एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी, इनका दूसरा प्रोग्राम आज हम पेश कर रहे हैं। रात्रि में 9 बजे तक आपका साथ हम देंगे आज मेरे प्यारे सुनने वालों, हमेशा की तरह। सुशीला चंद्रिका सिंह जी, हेर एंद्रू और चित्रा जी, अयत मार सबरुक, सुशीला चंद्रिका सिंह जी, अयत हम सल्फेन, आईफी जहांगीर, अयत हम सदाम, मफराव एंड मनेर बिहारी, अयत प्रेरा भैया, सुनील, अयत हम सदाम, रोहनी कल्लू, अयत रोतनाम, नरेश भैया, अयत अम्स्टरडम, प्रभा जी, अयत अम्स्टरडम सेंट्रम, और डरहा का मिका, आप सभी को डंकीवाल हम कहेंगे धन्यवाद, शुक्रिया आपके ऐप के लिए। कल रात्रि को 8 बजे से 11 बजे मेरे प्यारे से नॉलो पेश करेंगे यही स्टूडियो से, एकदम लाइव एंड डायरेक्ट, दिल की आवाज विद ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स, और इधर उधर कुछ धमाकेदार, खतरनाक, डर भरे नगमाएं भी है। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि आप भरपूर भी मेरा साथ देंगे कल। हियर ऑन यू आर, दिल की आवाज। ले चलते आपको अगले मूवी की ओर, जिसमें से हम 2 नगमाएं निकालेंगे। 73 से हम जाएंगे 1907, फंदरियन से वंतख नार नीहतीन सिस्टर। फिल्म का नाम काला बाजार, और काला बाजार का 2 नगमाएं मेरे प्यारे से वालों आप तक हम पेश करेंगे। पहला गीत जो है बहुत ही खूबसूरत गीत, जो मिलकर गाएंगे दादा मन्ना डे जी और नाइटिंगेल आशा जी, कि सांझ ढली दिल की लगी थक चली पुकार के। नाइटिंगेल आशा जी और दादा मन्ना डे जी, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गीत है और संगीतकार सचिन देव बर्मन। और उसके बाद में गीत जो हम पेश करेंगे, गीता दत्त जी और रफी साहब जी जो मिलकर गाएंगे नगमा, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ और एस डी बर्मन के साज और संगीत पर, कि रिमझिम के तराने लेके आई है ये बरसात। दोनों नगमाएं आगे पीछे, हियर ऑन यू आर, बैक टू द फ्यूचर में।

रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, रफी साहब जी और गीता दत्त जी की आवाजें, और उससे पहले गीत जो मिलकर गाए थे दादा मन्ना डे जी और नाइटिंगेल आशा जी की, सांझ ढली दिल की लगी ठक चली पुकार के, दो नगमाई मेरे प्यारे से नोलो शैलेंद्र जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार थे

0: एससी बर्मन, फिल्म का नाम काला बाजार और ये फिल्म 1907 का है। निखतिन सिस्टर देवानंद प्रोड्यूसर और एक्टर, डायरेक्टर जो है विजय आनंद इनका छोटा भाई। वहीदा रहमान के साथ इन्होंने ये मूवी में काम किया है और इन दोनों के अलावा भी नंदा, रशीद खान, विजय आनंद ने भी काम किए हैं। किशोर साहू, लीला चिटनिस बड़े भाई, चेतन आनंद जी भी है इस मूवी में, मदन पुरी और हेलेन। घर की तरफ मैं एक झलक तो 9 मिनट बाकी है सरे 8 बजने में, 9 मिनट ऑफ 4 o'clock, फन हाल्फ 9। हेरवाल्डो और मार्गरेट जी, थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए। हेरवाल्डो और मार्गरेट जी जो स्वाग में रहते हैं हमेशा, जब भी सुनते हैं आप ऐप करते हैं, सपोर्ट करते हैं, दिल से थैंक यू वेल, धन्यवाद, शुक्रिया। हम आपको ले चलते हैं अगले मूवी की ओर, जिसमें से हम 2 नगमाएं निकालेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों। देवानंद साहब जी का प्रोग्राम हम सजा रहे हैं और गाने जो इन पर पिक्चराइज किया गया है मूवीज में इनके, हमने आज प्लेलिस्ट को सजा रखा है और उसी में से निकाल रहा हूं और आप तक पेश कर रहा हूं। फिल्म का नाम अमीर गरीब, तो मतलब ये कि हम 14 साल फिर चाहेंगे नकुम अपनी दिन फिर से तक 1974 1974। फिल्म का नाम अमीर गरीब, 2 नगमाएं अब की बार आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ पेश करेंगे। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, 2 नगमाएं किशोर कुमार का पहला गीत किशोर कुमार और लता जी मिलकर गाएंगे कि बैठ जा खड़ी हो जा, और उसके बाद में किशोर कुमार का गाया हुआ एक गीत लता ने भी गाए हैं, लेकिन दोनों ने अलग अलग गीत गाए हैं ये मूवी में। किशोर कुमार का फर्शन ऑफ कोर्स हम पेश करेंगे, क्योंकि देवानंद साहब पर पिक्चराइज किया गया है कि मोनी और सोनी की है जोड़ी अजीब पीछे। दा मुत एर्स ही आंद्र, वन दी आंद्र मुत एर्स गस्पील्ड वोर्ड एंड दा गोमना मोनी
1: खड़ी हो जा।

मोनी और सोनी की है जोड़ी अजीब, और साजन अमीर या साजन गरीब है और सजनी अमीर। और किशोर कुमार की आवाज में गीत आप सभी ने सुना है। उससे पहले किशोर कुमार ने लता जी के साथ भी गीत मिलकर गाए कि बैठ जा, खड़ी हो जा, झूम जा, अरे झूम जा। ये था दो नगमाई मेरे प्यारे से नौल आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। निकाले हमने मूवी अमीर गरीब से, अमीर गरीब एक फिल्म 1974 का, नेहतिन फिरन सीवन, जिसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों ही मोहन कुमार, देवानंद साहब जी और हिरनी जैसे आंखें वाली हेमा मालिनी द ड्रीम गर्ल ने काम किया है। इन दोनों के अलावा मैं देखता हूँ तनुजा भी है, प्रेमनाथ, सुचित कुमार, नाजिमा, जूनियर महमूद, सुलक्षणा, राज मेहरा, मोहन छोटी, बीरबल, मुमताज बेगम, हेलन। तो फिर उनसे इवन तक से मेरे प्यारे सुनो वापस चलेंगे 14 साल वापस, वहां फिर 3 यार तरह नारनी खतीन सेस्तक 1907, फिल्म का नाम जाली नोट। जाली नोट से दो नगमाएं निकालेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों। पहला गीत जो है और दूसरा गीत जो है, ये दोनों नगमाएं रफी साहब जी और नाइटिंगेल आशा जी मिलकर गाएंगे, दोनों नगमाएं। और ये गीत तो जो है राजा मेहंदी अली खान ने लिखा और संगीतकार ओपी नैयर। मेरे प्यारे सुनो वालों, दोनों नगमाएं आगे पीछे रवि साहब जी और नाइटिंगेल आशा जी का गाया हुआ पेश करता हूं हियर ऑन यू आर बैक टू द फ्यूचर में।

खातिर दिल बड़ी मुश्किल में तूने आज डाला, और उससे पहले चांद सर्द सर्द है मेरा दिल में प्यार का हल्का हल्का दर्द है। दून नगमाई मेरी प्यारी सुनो वालो, पटना श्री मोहम्मद रफी साहब जी और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजें में हमने आप तक पेश किया है। दोनों नगमाए राजा मेहंदी अली खान जी का लिखा हुआ है और संगीतकार उपेन अय्यर। जाली नोट फिल्म का नाम जाली नोट, और ये फिल्म 1907 का है। नहीं खतीन सिस्तक, डायरेक्टर शक्ति समेंटा साहब जी, एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद और मधुबाला का एक फिल्म। स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, मोटर कार में बैठकर सवार सुन रहे हैं प्रोग्राम उजाला रेडियो पर बैक टू द फ्यूचर। तो बहुत बहुत धन्यवाद डंकीलाल स्वाग चून करने के लिए। जब भी आप सुनते हैं, आप एप करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके लिए दिल की गहराइयों से डंकीलाल। अगले मूवी की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। तो एक छलान हम लगाएंगे निहतिन सेस्तक से 11 साल का, और जाकर पहुंचेंगे निहतिन नसीब तक। फिल्म का नाम गैम्बलर, और गैम्बलर से दो नगमाएं निकालेंगे। पहला गीत किशोर कुमार गाएंगे और दूसरा गीत रफी साहब जी गीत गाकर सुनाएंगे। पहला गीत एक दर्द भरा गीत है, दूसरा गीत रफी साहब जी का एक रोमांटिक सॉन्ग है। महान कवि सॉन्ग राइटर नीरज का लिखा हुआ दोनों नगमाए हैं। संगीतकार सचिन देव बर्मन, एस दे बर्मन, और पेश करता हूं पहला गीत किशोर कुमार की दिल आज शायर है, और उसके बाद में रफी साहब जी विद मेरा मन तेरा प्यासा।

मेरा मन तेरा प्यासा, पूरी कब होगी रे आशा। रवि साहब जी की आवाज मेरे प्यारे सुनोलों, और उससे पहले किशोर कुमार का गाया हुआ एक नगमा कि दिल आज शायर है हम आज नगमा है। दो नगमाएं नीरज साहब जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। फ्रॉम द मूवी गैम्बलर, मेरे प्यारे सुनने वालों, गैम्बलर 1971 का मूवी है, नीखती नहीं नंसी वंतक। अमरजीत फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर, देवानंद साहब जी का फिल्म विद शॉटगन, सुदुर्गन सिन्हा, साहिरा साहिदा, सापरू साहब जी, किशोर साहू, सुधीर इफ्तखार। मेरे प्यारे सुनों, ले चलते हैं आपको अगले मूवी की ओर, जिसमें से हम दो आखिरी नगमाएं निकालेंगे आज रात के लिए। फिल्म का नाम है शराबी और दो नगमाएं निकालेंगे। पहला गीत जो है एक दर्द भरा गीत है, रजिंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ, रफी साहब जी की आवाज, कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा। और उसके बाद में इस प्रोग्राम का आखिरी गीत हम पेश करेंगे कि तुम हो हसीन कहां के हम चांद आसमान के, एक रोमांटिक सॉन्ग जो रफी साहब जी और आशा जी मिलकर गीत गाएंगे। रजिंद्र कृष्ण जी का ये भी लिखा हुआ नगमा है। दोनों नगमाओं का संगीतकार मदन मोहन। फिल्म नीहतिन फीरन सेस्तक, मेरे प्यारे सुनने वालों, 1964, राज ऋषि जी का डायरेक्ट किया हुआ, देवानंद साहब जी और मधुबाला का एक फिल्म। और दोनों नगमाएं चलाने से पहले मेरे प्यारे सुनने वालों, आज जितने लोग भी साथ दिए हैं, चून किए हुए हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। वेल, कल रात्रि को, मोर्गे 21, डोंडरग 21, रात्रि में 8 बजे से 11 बजे हम पेश करने चले आएंगे प्रोग्राम दिल की आवाज। तो तब तक के लिए आ गया, आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेम्बर, आई लव यू ऑल।